सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 4 जुलाई 2026 शनिवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। सभी दोस्तों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ सरगम का एक और अंक। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सिलसिला के गाने से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और म्यूजिक से सजाया है शिव हरी ने।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

अब आपके नजर है राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारे।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नायर का संगीतबद्ध गीत, जिसके बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली पेशकश है बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और जिसके बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और फिल्म का नाम है चलते चलते।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म फागुन से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसको म्यूजिक से सजाया है ओपी नायर ने और उसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब आपके नजर है ये एक और नगमा जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अजनबी और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और अपने म्यूजिक से सजाया है आरडी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही आज का सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लल्लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। मक्का की बुआई का समय खत्म हो चुका, अब बेबी कॉर्न के लिए बिजाई कर सकते हैं किसान। फॉल आर्मी वर्म कीट नुकसानदायक, बुआई के बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। दाने वाली मक्का की बुआई का उपयुक्त समय अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में किसान वर्तमान मौसम में केवल बेबी कॉर्न की खेती करें। बेबी कॉर्न उत्पादन के लिए MH4 और पूसा MH4 मेल स्टेराइल किस्मों को उपयुक्त माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बेबी कॉर्न की बुआई के बाद धान की पराली 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बिछानी चाहिए। पराली मल्च के रूप में कार्य करती है, जिससे खरपतवारों का उगाव कम होता है और फसल में उनकी समस्या नियंत्रित रहती है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे नुकसानदायक कीटों में से एक है। इसकी समय पर पहचान के लिए बुवाई के तुरंत बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। यदि पौधों की पत्तियों पर बड़े व अनियमित छेद दिखाई दे या गोब वर्ल में कीट का प्रकोप नजर आए तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। खेत की तैयारी, खेत की 4 से 5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगाएं, ताकि खरपतवारों व ढेलों रहित अच्छी बीज शैया तैयार हो सके। बीज की मात्रा बेबी कॉर्न के लिए औसतन 12 किलोग्राम प्रति बीज एकड़ डालने से वांछित पौधों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। बीज उपचार, रोगों व कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को पहले फफूंद नाशक और कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। दीमक व प्ररोह मक्खी की रोकथाम के लिए एमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL तथा 7 मिली प्रति किलोग्राम व रोगों से बचाने के लिए थीरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार के समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने, मुंह में मास्क लगाएं और हाथ में किसी प्रकार की चोट या खरोंच ना हो। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधों की 15 सेंटीमीटर रखें। पूर्व पश्चिम दिशा में मेड़े बनाकर बीज मेड़ों पर दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर गहरा बोएं। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बिजाई यदि न्यूमैटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड़ विधि का उपयोग करके की जाए तो मक्का का जमाव भी अधिक होता है व पानी का भी 30 से 35% बचाव होता है। खाद व उर्वरक, बेबी कॉर्न में ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद व रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय अच्छी गली व सड़ी गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग

करें। बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसी आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। सामान्य दशाओं में बिजाई के समय पूरी फास्फोरस व पोटाश 52 किलोग्राम डीएपी व 40 किलोग्राम एमओपी का एक तिहाई नाइट्रोजन 45 किलोग्राम यूरिया डालें। सिंचाई खेत में नमी बनाए रखने के लिए 6 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। दाने की दुधिया अवस्था व दाना सख्त होने की अवस्था में सिंचाई सुनिश्चित करें, वरना पैदावार में 15 से 20% की हानि हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा बरसात या तूफान की चेतावनी होने पर सिंचाई रोक दें। खरपतवार नियंत्रण बेबी कॉर्न में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 600 ग्राम एट्राजिन 50 WP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। टेम्बोट्रियन 42 SC 115 मिली प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गर्मी में पौधों में कम खाद डालें, मल्चिंग विधि अपनाएं। पेड़ पौधों और हरी सब्जियों के पौधों की जड़ों को ठंडा रखना जरूरी। जून और जुलाई के महीनों में चलती गर्म हवाएं लू न सिर्फ इंसानों को बल्कि पेड़ पौधों और हरी सब्जियों को भी बुरी तरह झुलसा देती है। कमल सैनी BHO करनाल ने बताया कि इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बागों में आम नींबू और अमरूद के छोटे फल पकने से पहले ही काले होकर गिरने लगते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में बाग सब्जियों की खेती या घर की बगिया किचन गार्डन को तपती गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक और स्मार्ट उपाय करने चाहिए। गर्मी में पौधों में कम खाद डालनी चाहिए और किसान मल्चिंग विधि अपनाएं। मिट्टी को ढकना पौधों के लिए सुरक्षा कवच। इस मौसम में सीधी धूप पड़ने से मिट्टी की नमी बहुत खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए पौधों सब्जियों के मुख्य तने के चारों ओर सूखी घास पुआल गन्ने की पत्तियां या सूखे पत्तों की 3 से 4 इंच मोटी परत बिछा दें। इसे मल्चिंग कहते हैं। यह परत सूर्य की सीधी किरणों को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे जमीन की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पानी की खपत भी आधी हो जाती है। सब्जियों की जड़ों को ठंडा रखने में यह विधि सबसे कारगर है। फल सब्जियां झड़ने की समस्या खत्म होगी। नींबू आम व बेल वाली सब्जियों में इस समय फल फूल झड़ने की समस्या आती है। इसका प्रभाव फसलों के कुल उत्पादन पर पड़ता है। तल केचुआ खाद पौधों के लिए सुरक्षित और हल्का टॉनिक है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोड्रामा को पानी में मिलाकर जड़ों के पास देने से इस मौसम में लगने वाली फफूंद से बचाव होता है। बोरोन और जिंक को फलों को फटने और झड़ने से रोकने के लिए बोरोन का बहुत हल्का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में शाम के समय करना चाहिए। हरे पर्दे की ओट और दोपहर की छांव। अपने घर की छत या बालकनी में गमलों में बागवानी की है या छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं, तो इस मौसम में 75% वाला हरा पर्दा जरूर लगाएं। ये नेट तेज धूप को छानकर पौधों तक पहुंचाती रहती है। इससे पौधों को भोजन बनाने के लिए जरूरी रोशनी भी मिल जाती है। रस चूसने वाले बारीक कीट के बचाव के लिए नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर साथ में हल्का सा लिक्विड सोप मिलाकर हर 10 से 15 दिनों में शाम के समय पौधों पर छिड़काव करें। जून में खेत समतल कराने का सही समय। लेजर लैंड लेवरर से बचता है पानी, पड़ती है पैदावार। सिंचाई के पानी की 25 से 30% बचत, पैदावार में 10 से 20% वृद्धि होगी।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की कटाई के बाद जून में लेजर लैंड लेवलर मशीनों से खेतों को समतल कराया जाए तो खरीफ सीजन में धान, मक्का, कपास फसलों की बेहतर पैदावार मिल सकती है। लेजर लैंड लेवलर जीपीएस लेजर तकनीक की मदद से खेत की ऊंची नीची भूमि को मिलीमीटर स्तर तक बराबर करता है। इससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचता है व कहीं भी जल भराव या सूखे की स्थिति नहीं बनती। समतल खेतों में 20-30% तक सिंचाई जल की बचत हो सकती है और उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से होता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बीरवाल ने बताया कि गेहूं कटने के बाद खेत अपेक्षाकृत खाली रहते हैं, इसलिए जून में लेजर लेवलिंग कराने से मिट्टी को बैठने का समय मिल जाता है और खरीफ बुवाई के समय खेत पूरी तरह तैयार रहता है। इससे बीज अंकुरण एक समान होता है तथा फसल की वृद्धि भी संतुलित रहती है। लेजर लैंड से लेवलर के फायदे। इससे हर मौसम में सिंचाई के पानी की 25-30% बचत होती है। किसानों की फसल की पैदावार में 10-20% की वृद्धि होगी। एक एकड़ खेत को समतल करने में केवल 2-4 घंटे लगते हैं। सरकार देती है सब्सिडी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत लेजर लैंड लेवलर पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% व लघु सीमांत महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलती है। पात्र किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। ये थे आज की कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056641310। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 7। आज का शीर्षक है सही चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी। यह है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक और एपिसोड। जिंदगी के रास्ते कभी सीधे होते हैं, कभी टेढ़े। कभी हम रास्ते चुनते हैं और कभी रास्ते हमें चुनते हैं। पर एक बात याद रखना जरूरी है, अगर रास्ते सही हो, नियत साफ हो और कदम ठीक दिशा में उठे तो मंजिल दूर नहीं रहती। आज का पहलू वही है, सही चलेंगे तो फायदे मिलेंगे। एक छोटी सी सोच जो बदल सकता है जीने का नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच के सफर पर। अगर हम सही दिशा में चलें तो हर रुकावट एक सीख बन जाती है और हर हार एक नया मोड़। तो आइए आज से थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर चलिए, क्योंकि सही चलेंगे तो फायदे जरूर मिलेंगे। और आज के पॉडकास्ट का हमारा विषय यही है, सही चलेंगे तो फायदे मिलेंगे। चलना भी एक व्यायाम है, एक ऐसा आसन और प्रभावी व्यायाम जो न केवल शरीर को दुरुस्त और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है बल्कि हृदय को भी स्वस्थ रखता है। हालांकि ये असरदार तब तक ही है जब तक चलने का तरीका सही हो। कई लोग केवल फिट रहने के लिए रोज चलते हैं, लेकिन अगर तरीका ठीक नहीं है तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चलते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि सही तरीके से कैसे चले, ताकि आप इसके पूरे लाभ ले सकें। गलतियां जाने और सुधार करें। फोन पर बात करना या स्क्रीन देखना। कई लोग चलते वक्त मोबाइल फोन पर बात करते हैं या मैसेज टाइप करते हैं। गर्दन और पीठ के झुके रहने से दर्द हो सकता है व हृदय और फेफड़ों को लाभ कम मिलता है। चलने पर ध्यान केंद्रित करो, स्क्रीन का उपयोग ना करें। बातें करना या ध्यान भटकाना। चलते हुए लगातार बात करने से गति और सांस लेने का पैटर्न बिगड़ सकता है। इसके कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और जल्दी थकान महसूस होगी। कैलोरी जलाने की क्षमता भी कम होगी। सही ये है, किसी के साथ चल रहे हैं तो शांत रहे, बातें करने से बचे। बहुत धीमी या तेज चलना। बहुत धीरे चलने से हृदय की कार्य क्षमता में अधिक सुधार नहीं होता। दूसरी ओर बहुत तेज चलने से सांस लेने में दिक्कत और थकान हो सकती है। इससे वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी होगी और मांसपेशियों में खिंचाव होगा। सही यही है, चलते समय एक स्थिर और संतुलित गति बनाए रखना जरूरी है, ना तो धीमे ना बहुत तेज चलिए। पानी नहीं पीना। चलने के दौरान शरीर से पसीना निकलता है जिससे पानी की कमी हो सकती है। कई लोग इस दौरान या बाद में पर्याप्त पानी नहीं पीते, जो कि सही नहीं है। इसके कारण शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और सिर दर्द होता है व मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। सही यही है, हर 10 मिनट में एक एक घूंट पानी पीते रहें। तुरंत बाद अधिक खाना। चलने के तुरंत बाद भारी भोजन करने से पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। पेट में भारीपन और अपच महसूस होगा, शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होगा, हृदय के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सही यही है, चलने के 30 मिनट तक के बाद ही कुछ हल्का भोजन करें। नीचे देखकर चलना। कई लोग लगातार नीचे देखते हुए चलते हैं, इससे गर्दन और कंधों पर दबाव पड़ता है जिससे जकड़न और दर्द हो सकता है। ये रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है जिससे समय के साथ शारीरिक मुद्रा खराब होती है। सही यही है, चलते समय पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़े और गर्दन उठाकर रखें। लंबे ढग भरना। बड़े कदम लेने से घुटनों, कुल्हों और टखनों पर दबाव पड़ता है। इससे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मांसपेशियों में असंतुलन व चोट लगने का जोखिम होता है। सही यही है, छोटे छोटे कदम ले, पैरों पर अधिक दबाव व खिंचाव ना आने दे। हाथ तान कर चलना। कई लोग चलते समय हाथों को तान कर चलते हैं या फिर बहुत ज्यादा हिलाते हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ सकती है, इससे चर्बी कम पिघलेगी और संतुलन में कमी आएगी। सही यही है, हाथों को हल्का लेकिन नियंत्रित रखें, तेज गति से झुलाने से बचें। क्षमता से अधिक चलना। चलना फिटनेस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसे ज्यादा अवधि और तेज गति से किया जाए तो पिंडली की हड्डी के साथ या उसके आसपास दर्द हो सकता है और थकावट का कारण बन सकता है। सही यही है, क्षमता से अधिक ना चले, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। घर पर चले, आप घर में भी अलग अलग तरीकों से चल सकते हैं, ये भी काफी असरदार है। घर के हॉल या कमरे में छोटे छोटे कदम चले या सीधे रेखा में आगे पीछे चले। एक स्थिर गति बनाए रखें और शरीर का सीधा रखें। बेहतर संतुलन के लिए हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलाइए। उल्टा चले, उल्टा चलना शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। अभ्यास के लिए एक सुरक्षित रुकावट रहित स्थान का चुनाव करें। धीरे धीरे उल्टे कदम चले और कदमों का संतुलन बनाए रखें। साइड वॉकिंग, पैरों को एक साथ रखें, एक पैर बगल में रखते हुए कदम बढ़ाए, दूसरे पैर को उसके पास लेकर आए, इससे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोहराए। सीढ़ियों पर चढ़िए, सीढ़ियों पर धीमी गति से चढ़िए। इस दौरान शारीरिक मुद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है जहाँ हर मोड़ हर रास्ता कुछ सिखाता है। अगर हम सही दिशा में चले तो हर रुकावट एक सीख बन जाती है और हर हार एक नया मोड़। तो आइए आज से थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि सही चलेंगे तो फायदे जरूर मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ, एक नए पॉडकास्ट में, नए जज्बात के साथ। तब तक याद रखिए, राहें वही चुनिए जो मंजिल तक ले जाए, ना केवल भीड़ में छुपा दे। नमस्कार।
0: तुझु बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ। आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
2: नमस्कार। ललदेद हुन युसी वाक उते वनन वोल सो, ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है। ललदेद छ वनन गोरन वन्नम कुने वचुन नेब्राई दोपनम अंदरे अचुन सुई गो लली में वाक त वचुन तवे हुतुम नंगई नसु। यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है। इस वाक को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा हमारे हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं। और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे ललदेत के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी। और यही लला कहती है, तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद, जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है, मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसने वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललदेत हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो तो यो है वाक पन्ने हटे तो युजन लुक बोझन कि अथ वाकस मस्त कित पर सरस्वती हैकान ऐसा वही।

तो शुभ ओजान एफ एम नमत आशार्या सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब हैं। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में, जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

अकेले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है? क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है? मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है? क्यों कोई मुझे राहे रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए? ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में

कुछ तो है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मास

ख्यालों को तन्हा कर जाती हो और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाती तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता गुजारिश करता मेरे एहसास को तुम संभालते मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं बेचैन है मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करें, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखे, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दे, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें।

क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए। तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाए, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नर्म नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रही। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

आज के लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका मस्ती वाला रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों का एक नया एपिसोड। इस शो में मेरा साथ देंगे आरजे शिवानी।
1: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का स्वागत कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। मैं आरजे शिवानी इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: आज के इस शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे जोड़ी की जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई है अपने दमदार संगीत से। जानेंगे उनके जिंदगी के बारे में और हम सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों के सफर में। आज हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने वरिष्ठ संगीतकारों की खिदमत की, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हीं को टक्कर दी और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए सभी स्थापित और ताकतवर फिल्म निर्माताओं को अपना मुरीद बना लिया। बॉबी, हीरो, सरगम, एक दूजे के लिए जैसी प्रेम कहानियों से इस जोड़ी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया था, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। यह अलग बात थी कि लक्ष्मीकांत का बचपन विले पार्ले मुंबई का एक उपनगर की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 सालों तक हुसैन अली से फिर बालमुकुंद इंदौरकर से मैंडोलियन का प्रशिक्षण लिया। बाद में हिंदी फिल्म की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगत राम के हुसनलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बहुत ही संगीत भरा गाना फिल्म एक दूजे के लिए से 16 बरस की बाली उम्र।

0: 40 और 50 के दशक में हुसैनलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी उनकी शागिर्दी की। इस जोड़ी के चांद 1944 में बनाए एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाने का कमाल यह था कि इसके बाद दर्द भरे गानों का दौर ही शुरू हो गया था। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारेलाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनोहिन के भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया।
1: साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। वादकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर किस्मत आजमाई, मगर वहां भी हालत ऐसी ही थी। सो दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। वो फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो सपना सच करेंगे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना जिसका संगीत इस महान जोड़ी ने दिया है और गाने के बोल है वो है जरा खफा खफा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आज मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अलग अलग सोच रखते थे। लक्ष्मीकांत संगीतकार बनना चाहते थे और प्यारेलाल बाहर जाना चाहते थे एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए। दोनों के सपने टकराए, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती ने जोर मारा तो लक्ष्मीकांत जिद पर अट गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देख प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की यह दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में रफी किशोर के गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा की तरह 3.5 दशक तक अखंड रहे।
1: लक्ष्मी प्यारे वादक से सहायक बने और फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। आखिर 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें खूब समझाया कि छोटे बजट की फिल्म उनके करियर को खराब कर सकती है, मगर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मी प्यारे की गाड़ी चल निकली। 1964 में इस जोड़ी को राजश्री प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा रहे थे। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी और आखिर बाजी मारी दोस्ती ने। इस टीम ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया था।
0: मामला यही नहीं रुका, जो मनोज कुमार और मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी को अपने फिल्मों का संगीतकार बनाते रहे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार रहे शोमैन राज कपूर ने भी जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दिया और उनका साथ प्रेम रोग तक चलता रहा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो इस संगीतकार जोड़ी की जिंदगी के साथ जुड़ा है और इन्होंने इस गाने का संगीत भी दिया है। सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वे घर घर जाते थे जब कभी भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता और साथ में प्यारे को भी ले जाते। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे की वॉलिन वादन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनको 500 रुपए का इनाम दिया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वॉलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन उन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 3 रुपए मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था।
1: प्यारेलाल जी ये कहते हैं, मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मदरिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहां मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैंने सब कुछ सहकर वहां पे टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया और उसका जिम्मा उठाया, और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। बहुत कम लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को अपनी शिक्षा देते हैं और उनको सही रास्ते पर डाल देते हैं। आइए सुनते हैं हम एक बहुत ही मनमोहक गाना जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने दिया है, फिल्म एक दूजे के लिए, और गाने के बोल है तेरे मेरे बीच में।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता, उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल जी का असली नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है, जिनको प्यार से प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि मुंबई और कर्म क्षेत्र है संगीतकार। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूं। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। चने में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जैमिनी गणेश, वैजंती माला और सावित्री, जिसके हमें 6,000 रुपए मिले थे। यह पहली बार था जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत 1200 रुपए थी।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने दिए। इनमें से कुछ है सावन का महीना फिल्म मिलन, दिल विल प्यार व्यार फिल्म शागिर्द, बिंदिया चमकेगी फिल्म दो रास्ते, महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, डफली वाले फिल्म सरगम, तू मेरा हीरो है फिल्म हीरो, यशोदा का नंदलाला फिल्म संजोग, चिट्ठी आई है फिल्म नाम, 1 2 3 फिल्म तेजाब। आइए सुनाती हूँ इन्हीं का एक मनमोहक गाना, जो है महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।
2: उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या

0: लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे जाकर वादी यंत्र मेंडोलिन बजाने की शिक्षा बाल मुकंद इंदौरकर से ली।
1: लक्ष्मीकांत पैरेलल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवाकर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने फिल्म मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। सभी सुनने वालों के लिए पेश करते हैं इनका एक और मशहूर गाना, जिसके बोल है, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।

आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर, जिसका नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। इस सफर में मैं भारत सोपोरी आपके साथ हूं और मेरा साथ दे रही हैं आज शिवानी। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। 70 और 80 के दशक में LP का सामान्य अर्थ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी लिया जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में LP ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के इस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया। वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसे हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ही शायद अकेले ऐसे शीर्षस्थ संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। LP की तुलना में हम शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद के सदाबहार युगल अवधान को याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीत की साम्राज्य की ये प्रभावी तिकड़ी का फिल्म संगीत में अलग ही स्थान था। आइए हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं इस मनमोहक जोड़ी का संगीत माय ये गाना जिसके बोल है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्णप्रिय व ऑर्केस्ट्रेशन से सजे गीत से बाबूभाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि 1963 से एकाएक मुख्य धारा में शामिल होने वाली यह संगीतकार जोड़ी जैसे प्रतिभा की प्रचुरता को अपने साथ तूफान की तरह लेकर आई। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाने का काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जुबिन मेहता से बुरी तरह प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया एवं सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था।
1: इसी तरह मदन मोहन वाली हकीकत के गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था मैं प्रयुक्त वायलिन प्यारेलाल ने ही बजाया था। आज भी संगीत के अधिकांश जानकारों के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बेहतर ऑर्केस्ट्रेशन की तमीज शायद ही किसी दूसरे संगीतकार के यहाँ मिलती है। आइए सुनते हैं इनका वो गाना जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। सुनते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता रामप्रसाद एक बेहतरीन वॉयलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वॉयलिन एवं पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और पांचवे दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र, नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है। इसी के साथ सुनाते हैं इस मशहूर जोड़े का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसके बोल हैं पत्थर के सनम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के उत्तरार्ध में अधिक सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने एवं स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सार्थक अवधान की सूची भी शायद इसलिए बेहद लंबी होगी जिसमें सभी का जिक्र या नमोलेख कर पाना एक अध्याय की सीमा से परे की चीज लगती है। फिर ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि साधारण या विशुद्ध रूप से फ्लॉप किसी फिल्म में यदि लक्ष्मी प्यारे मौजूद हैं तो शर्तिया वहां एक गीत ऐसा अवश्य होगा जो ठीक ढंग से संगीत प्रेमियों के बीच में चर्चा में आया होगा।
1: यह भी संभव है कि उसकी लोकप्रियता रेडियो पर बजकर या रिकॉर्ड व कैसेटों की उल्लेखनीय बिक्री से पुख्ता तौर पर बनी होगी। इसी कारण वह गीत निश्चित ही अपनी फिल्मों की असफलता से निरपेक्ष रहते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत प्रतिभा के सामर्थ्य को व्यक्त करता रहा होगा। इसलिए हमें एलपी के संगीत पटल को पूरी तरह किसी फहरिस्त में बांधकर रख पाने में असमर्थ ही दिखाई देते हैं। फिर भी उनकी प्रतिभा का सबसे नायाब नमूना माने जाने वाली कुछ फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो एक अनूठा एलपी टाइप बनाती रही है।
0: इसके साथ ही इस प्रोग्राम का समय समाप्त हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम का हम यही समापन करते हैं। दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रदर आम आई रेडी, 1 2

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
3: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: 랑보!
1: 띵구 랑보!
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान की पनीरी पानी में ही उखाड़ें, रोपाई में लाइनों का अंतर 20 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। खेत में हरे खाद वाली फसल खड़ी हो तो जुताई करके पहले इसे दबा दें। धान की रोपाई 15 जून से शुरू हो चुकी है। यदि खेत में हरी खाद वाली फसल खड़ी हो तो जुताई करके पहले इसे दबा दें व फिर रोपाई करें। पौध को पंक्तियों में रोपें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर काम्बोज ने बताया कि बौनी किस्मों की व पछेती हालत में लंबी बढ़ने वाली किस्मों की रोपाई 20 सेंटीमीटर फासले की कतारों में व पौधों में 15 सेंटीमीटर की दूरी रखकर करें। रोपाई के तुरंत बाद पानी का प्रबंधन। रोपाई के बाद शुरुआती एक हफ्ते तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी लगातार बना रहना चाहिए। यह पानी पौधों को सीधी धूप से बचाता है, उनकी जड़ें जमाने में मदद करता है और खरपतवार को उगने नहीं देता। पानी स्थिर होना चाहिए, लेकिन वह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुच्छे में पौधे। एक जगह पर एक खेत में केवल 2 से 3 पौधे ही लगाएं। बहुत ज्यादा पौधे एक साथ लगाने से उन्हें बढ़ने के लिए पूरा पोषण नहीं मिल पाता। पत्ती के ऊपरी हिस्से को काटना। यदि पौध थोड़ी लंबी हो गई है तो रोपाई से ठीक पहले उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा काट दें। इससे पत्तों पर रहने वाले कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और पौधा सीधा खड़ा रहता है। बौनी मध्यम अवधि वाले किस्में जैसे HKR 127 एवं मध्यम कम अवधि वाली किस्मों जैसे HKR 44 में 130 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालें। जिंक, फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1:3 मात्रा लेप बनाते समय दें और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार बराबर बराबर रोपाई के 3 व 6 सप्ताह बाद दें। जबकि बौनी कम अवधि वाली किस्मों जैसे HKR 39 में 105 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ प्रयोग करें। जड़ की सुंडी की रोकथाम के लिए करें उपचार। धान की पनीरी को उखाड़ने से 7 दिन पहले 1 ग्राम कार्बन डाइजिन बॉबिस्टीन को प्रति वर्ग मीटर की दर से रेत में मिलाकर पनीरी में एक साथ बिखेर दें। यदि धान का बीज पनीरी बोने से पहले उपचारित किया हो तो भी यह उपचार अवश्य करें। धान की पनीरी पानी में ही उखाड़ें। पौधशैया में यदि पौध पीली पड़कर सफेद हो जाए तो 0.5% हराक्सिस या फेरस सल्फेट 19% के घोल का छिड़काव करें। धान में जड़ की सुंडी की समस्या हो तो 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3 g प्रति एकड़ डालें। प्याज की नर्सरी के लिए जून जुलाई में करें बिजाई। 2 माह में ही तैयार होगी पौध। प्याज से कमाई का मौका। वैज्ञानिक तरीके से करें नर्सरी की तैयारी। प्याज की खेती अब केवल एक पारंपरिक फसल नहीं बल्कि किसानों के लिए मुनाफे का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। बाजार में इसकी लगातार बढ़ती मांग और वर्तमान में रबी प्याज के भंडारण में बेमौसम बरसात के कारण हो रहे नुकसान ने खरीफ प्याज की अहमियत और बढ़ा दी है। किसान प्याज की नर्सरी के लिए जून जुलाई में करें बिजाई। 55 दिनों में करीब 2 माह में पौध तैयार हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सितंबर अक्टूबर तक प्याज की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। ऐसे में खरीफ सीजन में प्याज लगाने वाले किसान भाई बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान NHRDF सलारू करनाल के केंद्र प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह के अनुसार फसल की सफलता की नींव नर्सरी से ही पड़ती है।
अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए

स्वस्थ नर्सरी तैयार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगस्त में तैयार की जाएंगी गांठें। खरीफ प्याज के लिए नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसके लिए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं: बीज की मात्रा, एक एकड़ क्षेत्र में प्याज की रोपाई के लिए लगभग 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के बाद लगभग 50 से 55 दिनों में पौध रोपाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जिन किसानों ने फरवरी में बीज से गंठियां तैयार की हैं, वे अगस्त में सीधे इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 4 से 5 किलो बीज से उगाई गई गंठियों की आवश्यकता होती है। NHRDF से ले उन्नत बीज। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान सलारू ने खरीफ सीजन के लिए उच्च कोटि की उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: एग्रीफॉन डार्क रेड ADR, NHRDF के नई किस्म 1,800 रूपए। इच्छुक किसान सलारू स्थित केंद्र से संपर्क कर इन प्रमाणित और उन्नत किस्मों का बीज प्राप्त कर अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। जून के आखिरी सप्ताह से शुरू कर सकते हैं मूंगफली की बिजाई। MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 उपयुक्त किस्म। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज लगभग 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े, जबकि पंजाब मूंगफली नंबर 1 के लिए यह फासला 22.5 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली बोते समय 1 एकड़ भूमि में बिजाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया व 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश व 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर ड्रिल करें। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग लाभदायक पाया गया है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता पन्नि माजि जब पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेश इवान। बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज चुस बु तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेत आमुत। आज बोजनाओ इस तुह अख कशर अफसान यु जन लिखमुत चु सानि कशीर हिंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अथ अफसानस चु नाव पोज अपुज। वलिव बोजव ये अफसान। पोज अपुज अख लकुट अफसान। अमिक लेखन वल चु वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: 90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनि पसंदीदा बगत

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक है बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत महफिल में, जहां अल्फाज रोशनी बनके चमकेंगे और सुरों की बारिश यादों को गीला करेंगी। ये है रेडियो वितस्ता 90.0 FM, जहां हर एहसास एक गीत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। चलिए शुरू करते हैं एक नए रेट्रो हिट्स का अंक, बाबुल। बाबुल, बाबुल एक बहुत गहराई भरा शब्द है जो बेटी की विदाई, पिता का प्यार और घर छोड़ने का दुख बयां करता है। वो जो छोड़ा था मैंने आंगन, आज भी यादों में महका करता है। डल गया आंगन का सूरज, अब अंधेरा छाएगा। बाबुल की लाडली बेटी एक दिन पराई हो जाएगी।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

हर गीत एक नया मोड़ लाती है, हर याद एक नए इंतजार की दस्तक देती है। आज की महफिल यहीं तक, पर कहानी अभी बाकी है। फिर मिलेंगे नए सुरों नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक था बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन

दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

दोस्तों खुश आमदीद, मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा।

शायद समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसो दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

कुछ भी नहीं, जो रुक गए कदम तो शायद बहक गए भटक गए, यह रास्ते आखिर जाती कहां है, क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है। बेशक सफर लंबा हो पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए, जो कभी पीछे छूट गए थे वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे। लेकिन नई परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ, आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते हैं

फिल्म गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हम हर दिन कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा प्रसारण करें जो आपके दिल तक पहुंचे, और करते हैं वो बात जो रखती है आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। श्रोताओं, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर आज के इस खूबसूरत सफर को विराम देने का समय आ गया है। आज का हमारा यह प्रसारण यहीं संपन्न होता है। समापन की ओर बढ़ने से पहले आज का विशेष लेख आपके आत्ममंथन के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्तों और रेडियो हमसफर भारत सोपोरी। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, जो है जीवन का असली सार। जीवन का रास्ता सीधा या सपाट नहीं होता, ये उतार चढ़ाव, धूप छांव और खट्टे मीठे अनुभवों से भरा है। इस सफर में जो चीज हमें लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती है, वो है हमारा आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को विरासत में मिलती है, बल्कि यह एक ऐसा पौधा है जिसे हमें खुद अपने भीतर सींचना पड़ता है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास हमारे जीवन का वो इंजन है जिसके बिना हमारी योग्यताओं की गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, ये हमें नए अवसरों को अपनाने का साहस देता है। दूसरा, मुश्किल हालातों में सही फैसला लेने की ताकत देता है। और तीसरा, जब दुनिया हमारे ऊपर शक करती है, तो अब आत्मविश्वास ही हमें खुद पर भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो जीतने से पहले ही आधी जंग जीत ली जाती है। आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें और इसको कैसे बनाए रखें, आइए इस पे बात करते हैं। आत्मविश्वास को रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। इसे धीरे धीरे इन तरीकों से निर्मित और कायम रखा जा सकता है। पहला, खुद को स्वीकारें, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी कमियों और अपनी ताकतों दोनों को अपनाएं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। रोज छोटी और व्यवहारिक लक्ष्य, यानी स्मॉल गोल्स बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप एक छोटा कदम भी सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग आपको संदेश भेजता है कि हां, मैं ये कर सकता हूं। और तीसरा, ज्ञान और कौशल बढ़ाएं। जिस क्षेत्र में आपको डर लगता है, उसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाएं और स्किल्स को अपग्रेड करें। तैयारी जितनी पक्की होगी, उतना ही डर कम होगा। और आखिरी, सकारात्मक माहौल। ऐसे लोगों के साथ रहें जो

मान लेते हैं। हमें लगता है कि एक काम में फेल होना मतलब जिंदगी में फेल होना है। हम ये भूल जाते हैं कि असफलता सिर्फ एक घटना है, एक इवेंट है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, जब भी हम कोई प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हम उसमें जीतते नहीं हैं, पर हम उससे अनुभव प्राप्त करते हैं ताकि अगली बार जब हम कोशिश करेंगे तो हम सफल हो जाते हैं। समाधान, अगर इसके बारे में समाधान की बात करें तो पहला दृष्टिकोण बदलें, शिफ्ट द पर्सपेक्टिव। असफलता को एक शिक्षक की तरह देखें, खुद से पूछें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, न कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दूसरा आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन। जब कोई दोस्त निराश होता है तो आप उससे सांत्वना देते हैं, लेकिन जब आप खुद असफल होते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। खुद के प्रति दयालु बने। गिरना ठीक है बट दोबारा उठना बहुत जरूरी है। और तीसरा बाउंस बैक करें। निराशा के दौर में कुछ समय का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और अपनी पुरानी जीतों को याद करें। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता से पहले एक बड़ी निराशा हाथ लगती है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल को छू गई होंगी और आपके भीतर के आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा मिली होगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। रेडियो विदस्ता पर आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। आज के इस खूबसूरत सफर को विराम देने के लिए कुछ पंक्तियां लाया हूं रोज की तरह। आज की पंक्तियां यूं है, रास्ते मुश्किल हैं पर मुसाफिर कमाल है। रास्ते मुश्किल हैं पर मुसाफिर कमाल है, ठोकरें लगती है लगने दो, हमारे हौसले बेमिसाल है। आज की रात डलेगी तो कल फिर एक नई सुबह होगी। आज की रात डलेगी तो कल फिर एक नई सुबह होगी। खुद पर रखो यकीन, हर मंजिल तुम्हारे पास होगी। खुद पर रखो यकीन, हर मंजिल तुम्हारे पास होगी। यह था आज का विषय और आज की पंक्तियां। इसमें सहयोग दिया टीम रेडियो विदस्ता ने, जिसमें कृष्णा और हमारी जो दूसरी इंटर्न है नैना, इन सभी के सहयोग से हम ये कंटेंट तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 5 जुलाई 2026 रविवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 भक्ति संगीत और कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर आप सुनेंगे हरियाणवी सेगमेंट का कार्यक्रम आओ गांव चले एपिसोड 12। कल हम आपको लेके चलेंगे गांव फलेल माजरा, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 8 तुम्हें याद हो कि ना याद हो का एपिसोड 6। ये कार्यक्रम नरगिस दत्त पर तैयार किया गया है, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा। 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे। और कल के लिए हम ला रहे हैं एपिसोड 8, जिसका शीर्षक है रिश्ते सुलझाना है तो मतभेद बुलाना जरूरी है। 9:30 होगा कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 1, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10:05 पर वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है एक लम्हा तुम्हारी याद का। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7054130010। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता से अब मैं आपका दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कल मिलते हैं सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।